जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जब आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरम तरा।

अमरदास अंगद पहचाना, अमरदास रामदास कहायो, साधन लखा मूर नहीं पायो, भिन्न भिन्न सब हो पर जाना, एक रूप किन हो पहचाना, जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई, तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा, धर्म प्रचुर इह जग मुकरा, अमरदास पुन नाम कहायो, जन दीपक ते दीप जगायो, जादू वरदान सवा ओ आवा, रामदास तब गुरु विजय पूर्व देवड़ा, जिसकी मस्त तिसे घर आवे, बैठा सोधी पातशाह, रामदास सतगुरु। जंतो मुन ध्यान धरे फिरत सकल जग, कबहू को पावे आत्म प्रकाश को, वेद बाणी सहित ब्रंच जस गावे जंतो, शिव मन कहना तजात कविलास को, जांको जोगी जनी सिद्ध साधक अनेक तब, जटाजूट पेख किए फिर उदास को, सो तिन सतगुर सुख भाए कृपा।

नाम मिले मन तृप्ति है बिन नामे दृढ़ जीवा। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुण का और किस विट्टो चौखनिए मैं नाम

गुरु साजी दवाजी साहब सिंह जीओ राग श्री राग ताड़ी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां के सुमेल के नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

0: तन है पूरे शब्द को खास ना।
1: जो पड़ताल है जिसनु पड़ताल गुरुमातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नु बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इसनु असीं दीप चंदी कहने हैं, 1400 मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इसनु पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ये ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ती धर्म दृढ़ता दागड़ती दिम दिरना, पागड़ती ब्रिते वांग तागड़ती तोम तोम तोम दिरना, दागड़ती दे ताल कागड़ती कोम किरना। ये साहब जी ने तराना गाया। तो इसका मतलब है दागड़ती दे ताल कागड़ती कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने, सरगमा लगानिया और ताना लगानिया। कुम किरना नाल दे ताल, दागड़ती दे ताल के तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाए। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इस नू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कढ दियो बाणी पढ़ी जाओ वो कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वो राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है। राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वो कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ, सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सत भक्ति जित नाते कौआ हंस होवे अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर नवधाया सब जाति।

0: श्रवण करो।
1: पहला चार ताल है, फिर तीन ताल है, फिर दो ताल है, फिर एक ताल है।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा वरे आ राव योग।

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई। जब ते सात संग तुम पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई। जो प्रभ की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब में रब रहे प्रभ एक है, देख देख नानक दिखाई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने यह तराना जेड़ा है ये अनकौमा जेड़िया ने गैर सिखा नू चुका के रख देने वाली बात है। मैं इथे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक कट्ठे हुए सी, कहन लगे जी सिखा नू तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साडे सामने ना कहा, कहिंदे असल वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साडे सतगुरां ने गाए आ, कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ। यह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी यह सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कह जी ये फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को श्रवण करो, उन्होंने को यह दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में नमस्कार की। इतने दुर्गाना मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान तो तराना श्रवण करना। साहब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तरह ने श्री सरवलोक प्रकाश ग्रंथ अंदर विद्यमान ने कभी आप दर्शन करना।

चार पंक्तियां हैं। धागर दी धर्म दृष्टान धागर दी दे मंदिरना धागर दी धर्म दृष्टान धागर दी दे मंदिरना धागर दी ब्रिक्ते

एतन होती खाक निमाणी गोर करे, एतन होती खाक निमाणी गोर करे। आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया, आज मिला शेख फरीदा तातम कुंजड़िया, मनो मचिंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी दुनिया।

व्यापारी मरना जो दिसे सो काले खरना जो दिसे सो काले खरना कबीरा तूर सकेल के पुड़िया बांधी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जाजी विचों जाए पाए

गगा गोविंद कुंद्रवो सास सास जपनीत कांब सासा देता बिलमना करियो मीत।

चलने चलना हार बिचारा ले मनो, चलने चलना हार बिचारा ले मनो। गंढे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी, जिमें पुछे आसमान फरीदा केवट किन गए।

कहे नानक चेतरे मन जीड़िया परदेसिया जीड़िया परदेसिया जिस वक्र को लैन तो आया राम नाम संतन कर पाया तज अब मान लिया म

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कैद कबीर सूरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

साइडे रे जासी रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावी से कुसाई खां सबे उठ जासी।

सारंग मजे परम तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंदानंग चक चक रहे देव दानम।

करो गरीब निवार, किस ही जोर हंकार बोलन का, किस ही जोर दीवान माया का। मैं हर बिल टेक धर और नकाई,

खोलू चरखा चक्की चक थर वरोले बहुत अनंत लाटू मधनिया अगाह पंखी भौजल सुबह चार पवाइये जंत नान भौज।

दीर्घ रोग है, दारू भी समाए, कृपा करे दे अपनी ठाकुर का सो तुम आल को कहे सुनो जनो।

पौड़ी सेव की संतोखे जिनी सचो साहित्याया ओनी मंदे पै न रखियो कर सुकुर धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंधन ना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला निदे वह चढ़े सवाया बढ़िया।

उन व्यवस्था निराबे गौड़ी गुआले दी सतगुरु जी ने इस राग गुरु ग्रंथ साहब के तीजा स्थान दिता है। ये भी बहुत वड्डा राग है गुरु ग्रंथ साहब के गौड़ी गुआले दी मारू दो राग सतगुरु जी बहुत वड्डे बहुत बाणी उच्चारण किए जो राग है आओ ये शाम का राग है गौड़ी गुआले दी जब इस शब्द नू मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल देश अंदरिया सतगुरु जी ने गौड़ी गुआले

अपनी सेवा प्रवान करने दुनियावी कम्मा का जन त्याग के सूरत के लिए इस वेले करवा गुरु दरबार की हाजरी भरिए हम आप जी अमृत ने की तन रागा दे गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा अनुसार गुरु अर्जन साहब की मर्यादा अनुसार सरवण किया है स्वतंत्रता दे आओ अंत दे सरबत माए भाई कितने गुरु चरणा च बैठे हो छोरिया की अरदास बेनती जो भी करनी है सतगुरु दात्या की हे काल पुरख सर्व शक्तिमान परम पिता परमेश्वर कृपा करो साडे छोरिया विच अपने पवित्र नाम की खैर पाओ आओ जपो सारे लवाओ हाजियां कोई रिश्ता खाज ना जाए।

कोड़िया पे ही करना चुगला पे ही तेधारी है। देखे किता अपना दर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चलसी सब कोई आई मारी है। जिसके री प्राण है

0: पच पशु नर नाग निरारप
1: सर्व समय सबको पद पार पोखत है जल में थल में पोखत है जल में थल में पल में कल

पहला नियम है गुरसिख दा के गुरु की संगत करनी। सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके, ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं। गरीब नवाज साहब फरमान।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर देन। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना होंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उस नूं मां भैन दा रूप जाने, धी नूं धी दा रूप जाने। बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नूं अज सच्चे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नूं मां भैन ना जाने, धी नूं धी दा रूप ना जाने, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जिहड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नूं बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जिहड़ा है उस पुत्र है, बच्ची जिहड़ी कौर है ते छोटा सा पुत्र है राजे दा, बादशाह दा। इस करके बच्ची ते बच्चे नूं इको जिहा प्यार देवे।

जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु अज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु अज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु अज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

एक वाहेगुरु अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूबहू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो विष्टा का किरम होए जन्म गवाए।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे। ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछ। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा।

शस्त्रहीन एक कबू न होई, रहतवान गुर का सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेडे पांच ककार दिते ने ना खालसे नू पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है भी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं ये बर्दाश्त नहीं करांगा भी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन

वैखंडे की पहुल छके जिथे पांच प्यारे नजर आवन अमर संचार दा पता लगे अपने जीवन नु गुरु के लेखे ला देवे ठंडे की पौल छक के अपना जीवन बतीत कर लवे सतगुरु दे लेखे ला देवे गरीब नु सचे पातशाह महाराज कहंदे हन भाई नंद लाल जी एक इंसान दे अंदर ऐसी गल आउंदी जिस नाल इंसान गिरावट

रहेगा, तख्त नाल प्यार नहीं रहेगा। जेड़ा गुरु के तख्त दे सामने अपनी कुर्सी डा लेगा ओ गुरु का सिख नहीं होएगा, ओ खुआर हुंदा चला जाएगा। ते फिर समयां दा समां बतीत होएगा, इतनी खुआरी होएगी, उस खुआरी नू हरन वास्ते फिर गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कलकी रूप अवतार धारण करनगे। निरंकार दे हुक्मां मुताबक लिखिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने 33

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उन्हूं कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो उन्हूं छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ये रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ते गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज फरमान

Belki hissedilir. Guru Maharaj'ı longing present karte hain, longing pesh karte hain, ek pyaas, zarurat, ek tadap da zikr karte hain. Aur aakhde han man loche har miran ko, mera man परमात्मा नु मिलना लोचदा है, इसके अंदर बड़ी भारी लोचा है। जदों परमात्मा नु मिलन दी जीव के अंदर भुख लोच प्यास पैदा हो जाए, समझो उसके अंदर बाकी तमाम चीजां ले वैराग हो गया। वैराग का अर्थ के बाकी तमाम चीजों के विचों वो डिसइंटरेस्टेड हो गए, ही हैज नो मोर इंटरेस्ट इन वर्ल्डली थिंग्स। उसके अंदर एक ही प्यास है कि वो उसने जो बनाने वाला सारी सृष्टि को साजन वाला है, जो उसमें पानी दिंदा है, ऑक्सीजन दिंदा है, धरती दिंदा है, अनाज दिंदा है, वो कौन है? जिसने इसमें बनाया है वो कौन है? वो अपने असल हर जी माता हर जी पिता जो सपना का पिता माता है उसको मिलना चाहता है, और उस अवस्था दे विच मन दुनिया वालों वैरागवान हो जाता है। दुनिया वालों मन जो है वो उदास हो जाता है, भाव उसमें कोई और किसी चीज की रुचि नहीं रह जाती, उसकी रुचि बदल जाती। बाबा जी आखते हैं इस अवस्था दे जाके जो जग्यासु है उसकी रुचि बदल गई है, उस दे मन की अवस्था यह है कि मेरा मन एक ही प्रिया मांगे। मेरा मन जो है वो एक उस प्रिया नू अपने प्यारे नू ही मंगता है, होर किसी चीज के नाल वो सैटल नहीं हुंदा, तृप्त नहीं हुंदा। मेरा मन एक ही प्रिया मांगे, मन लोचे हर मिलन। मन जो है वो दिन रात उस अकाल प्रभु दे दीदारां लई उस दे मिलन दे लई बेचैन रहिंदा है, अते अंदर एक सवाल पैदा रहिंदा है क्यों दर्शन पाईया, किमें उस दा मैं दर्शन करां, किमें मैं उस नूं मिलां। अते प्यास इतनी गहरी हुंदी है, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बोलाई आ। इस दे विच ए आख्या है कि ऐ मेरे साहिब जे मैनू एक बिंद एक पल एक छिंदे वास्ते भी तू बुला लवे, मैनू मिल पवे, मैनू मौका दे देवे, तो मैं समझांगा मैं लखां पा लै, मैं लख विड़ते साहिबा, मैं सब कुछ पा लिया, मैं लखां करोड़ां हासिल कर लै, जे मैनू एक मोमेंट दे वास्ते भी अपना मिलन दे दें, अपने दीदार दे दें, अपने आप नूं मिला लूं, क्योंकि मैं सब कुछ करके देख लिया है
किसी भी चीज तृप्ति नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, सब कुछ आर्टिफिशियल है, फेक है, मोमेंटरली है, अते दुख का कारण है। दुनिया का हर सुख जो है वो नाल ही नाल दुख भी दिंदा है। इस करके कहते हैं मैं चारे कुंडा पालिया, मैं हर थां ते पाव, मैं सब कुछ देख लिया है, तुद जेवड़ ना साइया, ऐसाई तेरे वर्गा कोई नहीं है। मेरे अंदर एक ख्वाहिश है, एक प्यास है, एक उमंग है, एक तमन्ना है, एक जाचना है, एक लॉन्गिंग है कि तेरे दर्शन मेनू किवें हो। शब्द का पहला हिस्सा जो है उस दे विच महाराज जी एक जिज्ञासा पेश करते हैं, अते ऐसा जिज्ञासु महापुरखां दे संतां दे पास आके बेनती करता है। उस बेनती नू आओ गाइए, दिलों गाइए। मैं